ब्रह्मांड सच्चे तेरे लोसे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमृतचा दीवान सच्चा तेरा उपमचा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखें लख करोड़ सच्चा है सबदान सच्चा है सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच तिहाइन सच।

बहुत अनंत लाटू मधानियां गा पंखी पौंदियां लै नसा सूए चाड़ पवाइया है जंत नानक पौंदियां गणत नंत बंधन बंद कुहाए सो पै किरत नचै सब कोय नच नच हसें चलें।

जोगी सुन के हवन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया काकार सतिया मन संतोख उपजय देने का विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे सिंध संसार चोरा जारा तय कूड़ियारा खरा बेकार एक हुंदा खाए चले अथाऊ तेरा बेकाई कार जल थल जिया पुरिया लो आकार आकार कोई जी आखे सुख है जाने तिलक तेरी सार नानकू भगता पुख सलाहनु सच नाम आधार।

अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई बिनना है कि थाए ना पाई रहे बेवाणी मणि मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आस दे सिते ने केवल हो मैं शब्द जलाए बोड़ी भगत रे।

सच्चा वेखे सोए सबनी छालां मारियां करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी देखे पत्त है चंगे से ही के पौड़ी तुलकर जिना पुत्र पाया ताकि अपनी खसम ते आया है न जलता कर उसके जनाई।

विचार विचारी पाव पंकरी नीचदाई पाव नानकी लोक अंतर पाए पौड़ी सुपुर तुम्हारे आ जित मिले ऐसा सुन संभाले अजन कर देश क्या रंग दिया इन नेत्री जब तुम्हें हाले आ सब तोड़ी।

पाठपुस्तक संध्या वादन शिल पूजस बगल समाधन मुख पूत देभूषण सारंग त्रैपाल ते हाल विचारंग गलमाला त्रिकुलाटं दोय धोती बस कपाटं जे जानस ब्रह्म कर्मं साफो कुट निश्चो कर्मं कौनानुकु नेचो ते

मत बिटे अन साडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन लिखे चुरी करे तौलन तू सच आईए सुच होवे ता सच पाए पौड़ी जिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएगा आपे दे बड़ाई आपे ही कर्म कराए दा वडो वडा वड़ में तुनी सिरे सिर तंदे लाए दा नदर पठी जे करे सुल्ताना का कराए दा कर मंगल।

आठर तीर्थ नाव है उतरे नाई मैल जिन पट अंदर बाहर गुजरते बड़े संसार तेन नेह लगा रब सेती देखना विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाहे परवाह नहीं किसे केरी बात सचे नाम दरबार तो प्रसन्न मंगा जब दे ता काहे दीवाने को कलमे का हम तुम हमें दर ले लिखा पीर छुटे नान का जो तेल पौड़ी आप ही करना क्यों करा पे ही तय धारी है देख ही तय अपना कर कच्ची पक्की सारी है जो आया तो चल सुन सब कोई आई वारी है जिसके लिए

जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुणगान, जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुणगान, गुण गावत के उतर समय सच्चे के गुणगान, गुण गावत तेरी उधर सुनैल बिन सजाए हो मैं दुख पैद, जन्म कर्म

दुख, मरण का दुख, जीवन का दुख, परलोक का दुख सारा खत्म हो गया। हालत सुख, पलत सुख, नित सुख सिमरनो, प्रेरणा है नाम गोविंद का सदा लीजे, मिटे कमाने पाप चिराने, चिरा दे पाप खत्म हो जाते ने, जन्मा दे पाप मुक जाते ने, साध संगत मिल मुआ जी जय। राज जोबन बिसरंत हर, इना च पै के असी विछड़ जाने, भुल जाने। माया महा दुख ए महात कहे, महात्मा लोग कहते ए चीज सानू निरंकार को विछोड़ के दुखी कर दी। आस प्यास रमन हर कीर्तन, आसा करके प्यास रख के निरंकार दे गुण गाइए, हरी कीर्तन च लगीए, ए पदार्थ भागवंत लहे, शरण समर्थ अकथ अगोचरा मंगिया इथे, पतित उदाहरण नाम तेरा, अंतर जामी नानक के स्वामी, सर्वत पूरन।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नू सिंह द्वार किया। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उसनू होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन अंतरयामी भगवान कृष्ण। दूरों सुदामे नू देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाईसा फरमान करदे हन

भगवान कृष्ण कोल जावां ते अपनी गरीबी दूर करवा दें। मगर क्योंकि दोनों ही एक शिष्य दे रूप दे विच हन, गुरु एक है, शिक्षा एक गुरु पासों लई है, ते दोनों ही अपने अपने असूल ते कायम है।

जे हुक्म होया त्रैबर नू एक पैगंबर नू अंगयारियां ते चलन दा सामने अंगारे वेखे घबरा उठिया पुकार कीती अपने खुदा दे चरणा विच हे परमात्मा ए अंगारे इन्हां ते मैं चलांगा ते मैं सड़ जावांगा ए फुल बन जाण

अंगारे फूल बन गए। ऐथे ही बस नहीं, खंबा तपा के लाल कीता है अगनाल। हुक्म होया हरनाकश दा, प्रहलाद नू इस खंबे नू गलवकड़ी पा।

बादशाह नूं फिर हकूमत करनी बड़ी औखी हो जांदी है। उन्हें तौज के जहांगीर विच स्पष्ट लिखिया है कि मैं चाहुंदा हां ये जो झूठ की दुकान गुरु अर्जन देव चला रहे ने गुरु नानक दे पंजवें वारस जिस दे उत्ते कुछ हिंदू और कुछ सिरफुरे मुसलमान भी ओदा उपदेश सुनन वास्ते जांदे ने, मैं चाहुंदा हां कि ये दुकान बंद कर दिती जावे, जिस तों स्पष्ट नजर आउंदा है कि समय की हकूमत नहीं सी चाहुंदी कि गुरु अर्जन दे रूप विच सच की आवाज लोगों के कन्ना तक पहुंचे। उस सच की आवाज नूं बंद करना चाहुंदा सी और इसका इल्जाम भी दूजियां दे सिर ते मढ़ना चाहुंदा सी। चंदू दे हवाले करके आप ओ कश्मीर वल चला गया। चंदू ने ईरखावश होके ए जुलम करने शुरू किए। चाहुंदा सी कि किवें गुरु अर्जन दे अंदर क्रोध दी अगन भड़क उठे, इहदा सिदक डोल जाए, पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह शांति दे पुंज जिन्हां ने अपना पवित्र शरीर ते बलिदान दे दिता पर सिदक नहीं हारिया, शहीदी महल दी नींह रखण लग्या। हजूर ने सब तो पहला अपना शरीर इहदे विच लाया, उहदे उत्ते ते शहीदी महल दी उसारी होई। आप उस अकाल पुरख दे भाणे नूं मनण दा संदेश

क्रोध नाल प्यार करते हैं। हजूर फरमाते हैं झूठ बोलना मुर्दार खाना चंगा लगता है, किसी नाल त्रोह करना ए इनू मिठे लगते नहीं। हजूर कहते ने ए वाहगुरु इन्हों रख लै इन्हों अवगुणा तो

आ भाई बंदी छोड़ नूं अरदास कीती सी ना पातशाह सी कैद होए पए मेर कर सानू इस कैद तो बंद खलासी करा अपना पल्ला पकड़ा गुरु पंचम पातशाह अरदास कर दे पंच दूत मो

कर काम। सिमरन तो बिना ये इंसान नहीं कामी कुत्ता है। आख्या कहने ने जून कोबरे बिन सिमरन भय कुकर काम। साकत बेसवा पूत नना बिन सिमरन गर्दब की न्याई। आ बिना सिमरन तो खोता बनिया खड़े।

रखियो गे पीतरो उठ उहाँ को दौरियो आज्ञा में भूख सोई कर सुख सो घरख नहीं जाने हो।

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोताए। मथुरा कहिंदा है पट के जब तक साढ़े भाग नहीं समझागे असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कलयुग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावे जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावे सनकाद साध सिदादक मुन जन गावे अचल छला, गावे गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माणी। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जनक दा दरबार लग्या सी और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की, और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखी है। साथ संगत बोलो श्री ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरां दा जिक्र, राजा जनक देव लोक नू गया, देवते भी लोचदे हन कि कोई जपण वाला साडी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नू देव लै के देवते लै के अपनी पुरियां विच जा रहे सन, ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई। राजे जनक ने पुछया ए कौन रो रहे हन, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हन जिथे पए होए जीव अपने कर्मां दे अनुसार भोग भोगदे हन, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जिहड़ा हीरे लालां तों भी महंगा सी, जिहड़ा स्वास हीरे लालां तों भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पा के, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है और तू बंदगी नहीं कीती तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया, उस स्वासां नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया। ताई आखिया

मान सकता है जेड़ा अपने घर आ गया, जिदा मन भटक रहा है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी अग विच जल रहा है। ए पटकिया होया मन किते टिकदा नहीं, जिवें अक दे अंब नालों तूंबा बिछड़िया, फिर पटकन तो बिना होर कुछ नहीं। जिधर दी हवा है हवा दे बुलियां विच तके खांदा फिरदा। ऐसे तरह जिन्ह ने गुरु दे चरण छड़ के अपने निज घर नूं छड़ के जो कूड़ियां पदार्थां दे नाल नेव लाई बैठे हन, हजूर कहिंदे हन जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माहे। जेड़ा घर छड़ जाना है उदे लई तू रात दिन भटक रहा है, ते जिथे जाए तुद वर्तना तिस की चिंता ना है, जिथे तू सदीवी काल वसना है। जेड़ा कार्य करन लई तू संसार ते आया है उस घर की कोई तैनू चिंता ही नहीं। ये शरीर भी एक घर है जिदे अंदर अकाल पुरख वाहिगुरु की जोत है। मनुख शरीर लई सब कुछ करदा है, चंगे वस्त्र पहनदा, खांदा पींदा पहनदा, सुगंधियां लाउंदा, सेजावां मानदा, पर इसने आत्मा नूं जिस आत्मा दे सदके शरीर चल रहा है उसनूं भुखिया ही मार छड्या, उसनूं कदे नाम दा भोजन नहीं दिता, कदे गुरु दी कृपा दे वस्त्र नहीं पहनाए, कदी सतसंगत दी सुगंधी नहीं लाई। हजूर कहिंदे ने जे तू सिमरन नहीं कर रहा, अमृत वेले जाग के इशनान करके अकाल पुरख वाहिगुरु दी भगती नहीं करदा तां तू अपनी आत्मा दा आप घात कर रहे। दुर्लभ देह पाई वडभागी, नाम ना जपे ता आत्म घाती, मर ना जाई जै बिसरत नाम, नाम भी हुन जीवन कौन काम। हजूर कहिंदे नाम तो बिना तेरा जीवन केड़े काम है, ओ पशु मर जावे ता भी कम कर जांदा, दस काज सवार जांदा। तू संसार ते आके जे सिमरन नहीं कीता, पदार्थ छक ले चंगे वस्त्र पहन ले, सिमरन नहीं कीता ता फिर नरू मरे नर काम ना आवे, फिर तेरी देही किसे काम नहीं आउनी, ए राख दी ढेरी हो जाएगी। इसलिए गुरु रामदास पातशाह जी कह रहे हैं, ओ मेरे मन परदेसी वे आओ करे तू क्यों भटकदा है, ए जो कुछ तेरियां अखां वेख रही हैं, ए ज्यो सपना अर वेखना, ऐसे जग को जान इनमें कछ साचो नहीं, नानक के हो। इसलिए भाई अपने निज घर विच आ, विचार कर जिस कार्य लई तू आया, तैसी वस्तु विसाहिए जैसी निभ है नाल, वस्तु ओ कठी कर जो तेरे नाल चलन वाली है। ए तां जो कुछ तेरियां अखां वेख रही हन, जदों भी प्राण पंखेरू उड़न गए ए शिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। इसलिए मेरे मन परदेसी वे तू परदेश विच आए, ए जगत एक सराय है जो मनुख आया है, सराय दे विच बैठ ते सराय नू मुसाफिर खाने नू जेड़ा मनुख अपना घर समझ के बह जांदा है उनू कोई सियाणा नहीं कहेगा, उनू कह देंदे हन भाई ये कोई मूर्ख है, क्योंकि मुसाफिर खाना है। राती आउंदा मुसाफिर प्रभाती तुर जांदा है, ते जे उस नूं जफा पा के बह जावे भई ये मेरा है तां फिर सियाणप नहीं। इसलिए तू परदेसी है। धन गुरु रामदास पातशाह शब्द विच कहिंदे हन मेरे मन परदेसी वे आओ करे अपने निज घर विच आ, भई अमृत वेले उठ के इशनान करिए ते फिर सत संगत विच बह के जपिए श्री वाहिगुरु। आओ करो गुरु रामदास पातशाह जी दे सोहणे दर्शन, क्योंकि बाणी दा दर्शन हजूर बख्शिश करदे हन। कोई प्यार दे नाल बाणी पढ़े, प्यार दे नाल सुने, ये गुरु का दर्शन है।

कबहू ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटिए, जुल्म नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीहां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है।

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश की गई है। आप समूह संगत नू खालसा जी दे 300 साल जन्म दिवस की लख लख वधाई होवे। सतसंगियो आस है कि इन्हां दी ए सेवा आप कबूलोगे कि अगों वास्ते अरदास करोगे महाराज बख्शिश करो। ऐसे ही तरह आप संगतां दी ए सेवा करदे रहन। शब्द गुरबाणी दियां कैसतां इतिहास दियां कैसतां घर घर विच पहुँचांदे रहन।

सत्संग बड़ा मुश्किल रह गया, चोखा मुश्किल, ये गया नहीं जाता। इन्नी तैयारी नहीं की हुई क्योंकि पहली बारी शायद दूजी बारी गाने लगे, तो माली गौड़ा बड़ा मुश्किल आ गया, एदा आन जान बड़ा विकट टेढ़ा जिहा है। आप सुनना

सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उन ओ परचून दे मालिक नहीं होंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी होंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा है वाहिगुरु तों।

ऐसे महापुरखां दे सिर्फ दर्शन ही कीतियां ओ पाप मुक जांदे हन खत्म हो जांदे नहीं।

मनुख भगती करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है, महापुरुषां दे चरणा दी पूजा कर, उन्हां दे चरणा ते सियाणपां छड़ के जदों अपना सिर रखेगा, बस बाबा जी कहंदे ने जवां दी मार तो तैनू छड़ा लेंगे। कबीर जी ने भी आखिया

दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य, बचपन दोनों दा इको गुरु दे पास गुजरिया, मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया वड्डे हो गए सुदामा गरीब रह गया, भगवान कृष्ण महाराजे बन गए, द्वारका नगरी दे मालिक बन गए।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार कहा है। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उसनूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन। अंतरयामी भगवान कृष्ण दूरों सुदामे नू देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाइसा फरमान करदे हन।

मगर पाईसा पाई गुरदास जी जेड़ी रमज तक पहुंचे कहंदे ने दोनों ही अपने अपने असूल ते कायम। ते ए जानदे होए भगवान कृष्ण कि सुदामा अपनी जबान तो मंगेगा नहीं, ते भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यार कीता, परदखणा लई पैरी पै के गले लगाया और उदे चरण धो के उसनू अपने सिंघासन ते बिठाया। ते सिंघासन ते बिठाण तो बाद उसनू बड़ा प्यार कीता, इतना प्यार कीता। ते प्यार करन तो बाद भगवान कृष्ण कहन लगे, सुदामा बचपन तो हुण जवानी आ गई है, इतनी उमरा हो गई है, बड़ा चिर होया है मिलियानू, कोई गुरु दी सेवा दी कथा सुना।

दयाल होए मेरा स्वामी, किस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की।

अवगण बड़ी तिखी छुरी मनुख दे दैवी गुणा नूं कट के नकारा करके सुट दिंदी। मनुख मनुख ना रह के पशु हो जांदा। औगणे आरा मनुख पशु है। गुणवान प्रभु अपने प्यारियां दे हिरदे च गुण वसा के तोरदा है। औगणा दे वस पै के बंदा थले गिर जांदा, अपनी हस्ती तो नीवा हो जांदा। अवगुण मनुख दे गुणा नूं कटदे ने, दी हस्ती नूं कटदे ने, ते सतगुरु औगणा नूं कटदे। सतगुरु दे नजदीक होइए, सतगुरु दे चरणी लगीए ते औगण कटे जांदे, औगण कटे जांदे ने गुण निसरदे। जिस सतगुरु पासों प्रभु नाल जुड़न दा उपदेश मिलदा, जिस सतगुरु पासों हिरदे च नाम वसाउण दी जाच आउंदी, जिस सतगुरु ने आपां हुणे तक पढ़ रहे सां एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना मूआ, ऐसा जीवन बख्शिया है जो टिकिया रहन वाला अटल जीवन है। ऐसा जीवन बख्शिया है जिहड़ा मौत तो उपर है। और आप देखते हो मौत आउंदी है ते बंदे दी कहानी मुक जांदी, मनुखी जीवन दी कहानी मुक जांदी। लेकिन एक गुरु का सिख है जिदी जिंदगी मौत कबूलन तो बाद शुरू होंदी। पहला मरण कबूल जीवन की छड आस, औगण मर जांदे, नकारा मनुख मर जांदा। एक सच्चे मनुख दा जन्म हुंदा, गुणा दा जन्म हुंदा, दैवी गुणा नूं लै के मनुख उपर नूं उठदा, गुरु नूं प्यारा लगदा, गुरु नूं पाउंदा है, संसार नूं चंगा लगदा। और मेरे साहब ने ऐसी बख्शिश की है सानू, जिवें महाराज ने पावन बाणी च किया है ना, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे। तैनू पता है साडा की हाल हुंदा सी, तेरे चरनी लगन तो पहला साड़ी की अवस्था सी। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तेरे चरनी लाके असी कीड़े बादशाह हो गए, सरदार हो गए, मान वाले हो गए। रुलते फिरते कीड़े सत्कार योग हो, और ये सत्कार इत्थे भी मिलता है, तेरी दरगाह विच भी मिलता है। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले है चूके सब सोग संतापे। जिंदगी विचों संताप निकल गए, चैन आ गया, सुख आ गया जीवन में, कायर हुंदे सां बहादुर बना दिता, नफरत नाल भरे सां प्यार नाल भर दिता, आलसी हुंदे सां उद्यमी बना दिता, बुरा चितवदे सां सेवादार बना दिता, परोपकारी बना दिता। और जिसने औगण कट के गुण समझा के सानू इन्हें योग कीता है, अमृत दियां दातां दे के, नाम दियां दातां दे के, बाणी दी सौगात बख्श के, जीवन दा सुचज बख्शी है। साहब कहिंदे ने जिन जग जीवन उपदेशिया, तिस गुर को हो सदा घुमाया, मैं वारने जावा सतगुरु तो, तिस गुर को हो खनिए, मैं टोटे टोटे हो जावा, बलिहारने जावा उस तो। जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया, जिसने वाहिगुरु का नाम मेरे हिरदे विच सुना के वसाया, तिस गुर को हो वारने, जिन होमे बिख सब रोग गवाया, होमे वर्गे महारोग मेरे जीवन विचों कटे ने जिसने, तिस सतगुर को वड पुन है, उहदा कोट आन कोट धनवाद, उहने बड़ा पुन कीता मेरे ते, जिन अवगुण कट गुणी समझाया। सदा उस सतगुरु नूं चेते रखना गुरसिख दा फर्ज है, उहदा परउपकार साडे सिर ते, उहदी बख्शिश साडे सिर ते करदा है। जिसने हमरे मस्तक दाग दगाना, हम कर्ज गुरु बहु सांडे। साडे मथे ते अपने अपने प्यार दा दाग ला के, अपने प्यार दी निशानी ला के, अपना बना के अपना रूप दिता है, अपना सुचज बख्शी है, अपना प्यार बख्शी है,
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਾਂ, ਹਮ ਕਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ।

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते बना।

सतगुरु कहिंदे ने जे मालिक नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा हो जा। इहदे विच को मेर तेर नहीं। कदे बच्चे ने किसे दूजे बच्चे नूं पुछिया, आ छोटे छोटे क्लास विच पढ़दे ने ना, अजकल ते ढाईआं ढाईआं तिना तिना सालां दे दाखल करवा दित्ते। कदे किसे दूजे धर्म दे बच्चे नूं किसे ने पुछिया भी तेरा धर्म केड़ा, तेरी जात केड़ी है, तेरी गोत केड़ी है? ना, आपस विच प्यार नाल हसदे ने, खेड़दे ने। सतगुरु कहिंदे ने जे रब नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा पुंजा। ये बड़ा भोला है, बड़ा चंगा है।

जे हुक्म होया एक रहबर नू एक पैगंबर नू अंगयारियां ते चलन दा सामने अंगारे वेखे घबरा उठिया पुकार कीती अपने खुदा दे चरणा विच हे परमात्मा ये अंगारे इन्हां ते मैं चलांगा ते मैं सड़ जावांगा ये फुल बन जान। प्रभु दा भगत सी अंदर जेड़ी ये लालसा उत्पन्न होई परमेश्वर ने ओदी भावना पूरी कीती कौतक वरत्या ओ अंगारे फुल बन गए। ऐथे ही बस नहीं खंबा तपा के लाल कीता है अग नाल हुक्म होया हरनाकश दा प्रहलाद नू इस खंबे नू गलवकड़ी पा

चारे पासे एक खबर फैल गई। चंदू जिसनु समय दी हकूमत दे बादशाह ने गुरु अर्जन देव पातशाह नु तसीहे दे दे के शहीद करन दा इशारा मिल चुकया सी। ओ चंदू अपने वल्लों उसने कोई कसर बाकी नहीं छड़ी। प्रभु परमात्मा दा खौफ भुल गया, अपना आप भुल गया, सिर्फ एक तशद्दद करना ही उसके सामने है। कई तो यह भी कहते ने कि उसने बदला लिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी के साहबजादे गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जदों चंदू दे भेजे हुए दूतां ने रिश्ता कर दिता और आके दसिया कि गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे सहजादे साहिबजादे हरगोबिंद साहिब पातशाह उन्हां नूं रिश्ता दे आए हां, तां हंकार विच हौमें विच मतिया होया ए चंदू, क्योंकि सरकारी दरबारे ये नौकरी करता सी, इनू बड़ा चंगा दीवान का रुतबा हासिल सी। हंकार विच बोलिया, तुसी चुबारे दी इट मोरी नू ला आए हो, पाओ अपने आप नू उसने बहुत वड्डा दसिया ते गुरु घर नू एक बहुत नीवा दर्शाया, जिसनू सुन के कहंदे ने संगतां ने बड़ा रोस कीता और संगत ने आखिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी हो आप जी ने यह रिश्ता नहीं लैना, वापस कर दिओ, मोड़ दिओ रिश्ता।

0: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live from the bottom of 24 hours a day around the world.
1: I'm the pure ऐसे ध्रुव पहला जपियो जैसे माँ राजू बाबा पढ़े सन। मैं पूछा क्या लगे बड़ी लंबी कथा माँ तनु आंदी है।
2: हाँ सुन, हरनाक्ष नां दा एक बड़ा शक्तिशाली राजा सी। उन्हें भगवान की भक्ति करके एक वरदान लिया कि ना वो दिने मरेगा ना राती मरेगा ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा ना मनुख कोलो ना किसी जानवर कोलो। भगवान का वरदान लेके वो आप ही भगवान बन बैठा। उस राजे का एक पुत्र सी प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता नू भगवान मनन तो इनकार कर दिता। क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नू तपते थम नाल जफी पाण दा हुकम दिता। ते प्रहलाद दे दिल विचों आवाज आई, पाले तत्ते थमा नू जफिया आपते तेनू राम रख लो। प्रहलाद ने थम नाल जफी पा ली पर उहदा वाल भी विंगा ना होया। गुस्से विच आ के राजा ने तलवार कट ली ते थम पाट गया।
1: मैं भी प्रहलाद बनांगी, मां तू आंदा जाप करांगी।
3: नहीं, मेरी बहन